0: जी सक्सेना
1: जी शुक्रिया
0: Still West 220, Louis at a plate 153, Alpha Romeo Kilo, to the gray Subaru Outback.
1: Sure.